वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पर दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: It's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: smack him back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is a matter in the house. Come on, all the

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: I'm dead without you.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ बिल्लाह इब्न शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे थिंक टैंक से ये तुकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अमीन तजिया नगार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद भी कहते हैं और मैं माइक जो है शाह साहब के हवाले करता हूँ।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फूर साहब आपको, अदनान साहब को और आपकी टीम और जितने लिस्टर नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब आज मौसम जो है, पहले तो धूप निकली हुई थी लेकिन अब फिर दोबारा मौसम जो है वो टेम्परेचर इतना भी बुरा नहीं, अच्छा टेम्परेचर है। मौसम जो है वो यही समझ लें कि हम लाहौर से मरी आए हुए हैं और मरी में रह रहे हैं। बचपन में सुनते थे, माए कहती थी कि जहाँ पुत्र तुम तत्ती हवा आना लगे, वो ऐसी तत्ती हवा से हम बचे हैं कि हम अब यहाँ बैठ कर तो सोचते हैं कि कब हमें गर्म हवा मिलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं जो है हर वक्त वो माँ की दुआ के साथ हमें यहाँ मिलती हैं। तो आते हैं कल की सियासत पे और आज की सियासत पे। अदनान, मेरा ये सवाल आपसे है कि आप यंगस्टर हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस वक्त नेशनल लेवल और लोकल लेवल की दोनों सियासत को आप बाखूबी समझते हैं। ये मॉडर्न बुश्को का कल जो बयान था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेदे हो रही है। मुझे टर्किशों ने भी, अल्बेनियों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी काफी टेलीफोन किए हैं, आज भी किए हैं, और उन्होंने कहा कि इसका जो फेसबुक पे लहजा था, इसने जो बार बार गुस्से में ये कहा है कि तीन दफा कहा है कि क्रिमिनल्स उलेनिंग, तो ये क्या सिर्फ अगर क्रिमिनल पे ही बात रख लेता तो, या क्रिमिनल उलेनिंग एक दफा करके तो काफी था, तो दो तीन दफा, और फिर उसका जो इंसेक्ट है जो उसकी मुझे भेजी गई है फेसबुक की, उसके ऊपर तो उसने बड़े इतनी सख्ती तो चेहरे पे आपने कभी इंगा सोएवे की भी नहीं देखी थी और इतनी मॉडर्न मैसेज भी की नहीं देखी थी। इसके बारे में आप पूरी तरह रोशनी डालें क्योंकि आप इसकी पार्टी के हैं। क्या ये सोशल डेमोक्रेट की जैसे मेजर फेडरसन कहती है कि मैं ब्लू ब्लॉक से ज्यादा वोट लूंगी और इस तरीके से, तो क्या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि ये अब सख्त से सख्त बयान दे ताकि ये रेसिज्म को जो है वो हवा देना चाहते हैं डेनमार्क के अंदर? क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि मेजर फेडरसन के ही सोशल डेमोक्रेट के ही जमाने में सबसे ज्यादा क्राउन बर्निंग हुई थी और फिर पाबंदी भी इन्हीं के जमाने में लगी, तो क्या अब ये दोबारा कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं? जी अदनान
3: साहब, इसमें तो दो, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो है जिस तरीके से उसने कहा है, ये मुझे नहीं क्या पता कि उसको उसकी वो इतना अग्रेशन क्यों हुआ है। मैं उसके अंदर तो नहीं हूँ, मगर मेरे ख्याल से अग्रेशन इसलिए भी आ रही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जब हुकूमत बनी थी ना तो पहले दिन से ही मॉक मिटर्स बेचने और इनके स्टॉल पे आने ना टेक्निकली बहुत सख्त अटैक कर दिए थे कि अब बहुत सारी लिंपल से आनी है और क्या कहते हैं बहुत सारे आयन और कानून क्या कहते हैं टूटते हैं। उसके अलावा ये भी थी कि कुछ इनके पास कुछ रिपोर्टें आ रही थी कि जिसके अंदर पॉलिटिकल असाइलम जिनको मिला हुआ है उनके कुछ केसेस हैं और वो के उस पर भी कुछ इनका क्या कहते हैं था कि ये लोगों को हम लाते हैं तो फिर ये होता है। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो उसने एग्रेशन में दी है, जहां तक मैं उसको जानता हूँ, जहां तक मुझे उस पर पता है, वो इस तरह का नेचर का बंदा ही नहीं है। तो उसके बड़े क्या कहते हैं तलका है, मेरे साथ भी उसका हुआ है, हमारा जो काउंसलर यासर इकबाल उसके साथ भी, अजाज बुहारी साहब भी जो काउंसलर है हमारे, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो उससे ये कि उस स्टेट में दिए, ये तो हमें जब वो हमसे कभी मिलेगा तो हम उससे पूछ सकते हैं। पार्टी की पॉलिसी ये है जो मैं आपको मेंशन कर दूं, जो हमने इलेक्शन में भी कहा था और जो हम आज भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काम करना चाहते हैं और जो इस सोसाइटी का हिस्सा बन के हुए हैं وہ موسٹ ویلکم ہے اور ان کی ہمیں ضرورت بھی ہے. ہاں جو اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور جس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ میچنگ ہے, ان پہ ان کی پالیسی ہارڈ لائنر ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, میں جب خود کونسلر کے الیکشن میں تھا اور یہ کمپین کے الیکشن میں تھا, انفارچونیٹلی میں ایک جگہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس نے ایک اس پہ بات ہو رہی تھی تو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو ہمیں آئی سی ایم کر دینا چاہیے. تو وہ میرے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا یہاں پہ وہ کہتے یہ بات کیا کر رہے. میں نے کہا مجھے سب خود ہی آ رہی ہے, کونسلر ہے اور یہ خود اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ وہ ٹیکس پالیسی پر چیز بیٹھے ہوئے ہیں, سینمس سے مکھاڑ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہیں گے کہ ہمارے بندے اس طرح سے بات شروع کرتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا. جو پالیسی ہماری جو تھی الیکشن کے اندر وہ یہی تھی جو ہم نے پال چینج کرانے کی کوشش کی تھی کہ جو اس سوسائٹی کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو کرائم کرتے ہیں اور جو پارٹسپیٹ نہیں کرنا چاہتے اس ملک میں اس پہ پالیسی ان کی تھوڑی ہارڈ لائن ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو کلیشن کی گورنمنٹ بنی ہے بھاری سب کو پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے شاہ صاحب کے اس کے اندر لاسٹ لوکے بھی ہے, اور لاسٹ لوکے کی آپ کو پتا ہوگا کہ 2001 سے لے کے 2011 تک اس کی کون سی پالیسی تھی. تو یہ جو بحث چاہ رہی ہے نا کہ یہ لمپل سے ہو سکتی ہے,
4: ٹھیک ہے ٹھیک ہے عدنان, یہ ٹھیک ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ جب ہمارا جنما کا گن لا جو ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے, آئین جو ہے, وہ یہاں پہ مینس کا غاری ہے اور فریڈم کی بات کر رہا ہے, اور جب آپ اپنے منسٹروں کو سنتے ہیں, آپ انگا سٹوئبر کو دیکھ لیں, آپ لارس لوکر کو دیکھ لیں, آپ ماڈرن میسر سمتھ کو دیکھ لیں, آپ میڈل فیرس کو سن کو دیکھ لیں, کہ یہ اتنی اتنی بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی اس سے اپنا بوسکو نے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ فور سکیلز میں ہینڈل نہیں گیا کہ ایک بچہ جو ڈینمارک میں بانڈ ہوا ہے اگر اس سے کرائم ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک وائٹ ہے تو وہ یہاں کا ہے اور ایک براؤن کلر کا ہے تو اس کو باہر بھیج دیا جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ یہاں پہ اسائلم لیتا ہے یا کوئی بندہ یہاں پہ آ کر جاب لیتا ہے اور وہ اس طرح کے قتل و غارت کرتا ہے, کرائم کرتا ہے, بڑا کرائم کرتا ہے تو اس کو اس کر دیا جاتا ہے, تو وہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کو پتا تھا کہ اس ملک کا جو حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے, اس کو واپس جانا چاہیے. لیکن جو بچے یہاں پہ بانڈ ہوئے ہیں اور اگر وہ مس کوئی غلطی سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھا لیتے ہیں کہ ان سے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو ڈرگس کا کام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا اس کے اوپر الزام آ جاتا ہے تو اس کو اوبیس کرنا اور ڈینس کو جو ہے اس کو وائٹ آدمی کو انہوں نے جو یہیں پہ رکھنا ہے, تو اس فور سکیلز کے اوپر جو ہے وہ بات لوگ پوچھ رہے ہیں, وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ فور سکیلز پہ ہینڈلنگ کیوں ہے.
3: شاہ صاحب اس پہ تو یہ دیکھیں, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس پہ فوسکس پہ نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ ہم نے کافی کیا کہتے ہیں آواز اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے اور کیا کہتے ہیں اس پہ بات چیت بھی کرنے کی کوشش کی ہے, مگر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک پریکٹیکل پوائنٹ ہو جاتے ہیں اور میجورٹی, اسی لیے ہم نے ایک سولوشن لانے کی کوشش کی ہے اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایک ایک کیا کہتے ہیں ایک بگ اسکول میں ایک چیز کو ہی لے کے جانا چاہیے, اور یہی ہم نے ایک جگہ تھے ہم ڈیبیٹ میں تھے وہاں ہم نے پھر وہ بات کی تھی اور اس پہ ہمیں ابھی تک امید ہے اس پہ تھوڑا بہت چینجز آئیں گی, مگر یہ تو غلط ہے کہ یہاں کا جو سٹی سینٹر اور جو یہاں پیدائش ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی اس کرتے اگر وہ دیکھے اب دیکھے کیا ہوتا ہے. اور آپ کو ایک چیز میں یاد کرا دوں, مجھے لگتا ہے کہ مورٹن پلسکو کو جس دن یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی نا اس دن نا یہ جو معلوم ہوگا کہ ان نے پچھلے سال ایک لا بنایا تھا 22-23 میں بھی کہ ویل ریسننگ کا, और उसी दिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक डिसीशन आई थी जिसके अंदर इनका वो जो आइन और कानून था वो एक किस्म का लागू नहीं होता। तो हो सकता है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो कि हमने ये कानून बनाया है तो ये चालू नहीं हो सकता, मगर वो बाद में हमें पता चला था कि उसके अंदर वो जो कानून है उसके अंदर एक दो चीजें ने खुद क्या कहते हैं अब लाने लगे हैं, तो फिर आगे मगर देखते हैं कि लाते हैं कि नहीं लाते। ये बात सही है कि डिस्क्रिमिनेशन ही होनी चाहिए, इसीलिए आपको मालूम होगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन ह्यूमन राइट्स है वो बार बार बोलता है कि आप वो कानून बनाए जो एक जैसा हो, और देखते हैं आप फ्यूचर में क्या होता है। हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में डेथ मार्क में, हमें उम्मीद भी है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे।
4: दरान ये आखिरी बार मैं आपसे पूछूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं पढ़ रहा था, स्पेशल पैराग्राफ को पढ़ रहा था जहाँ पे काफी 8-2 फौसले लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर जो राइट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आप चेकोस्लोवाकिया, एक्स चेकोस्लोवाकिया, रशिया, पोलैंड कहीं से भी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर आकर रह रहे हैं, सेकंड थर्ड जनरेशन हैं, तो वो डेनिश ही कहलाएंगे, यही के वो बशिंदे होंगे और हमारे लिए भी वही कानून है जिसके तहत हमें यह मिला। अब जो आज लोगों ने ज्यादा वजन डाला है वो ये, वो आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, वो कह रहे थे कि हमें इससे पहले कि मैं आपके तरफ हुआ हूं, जो वो आप मुझे मॉडर्न मैसेज स्मिथ का बता रहे थे, उससे पहले मैं आऊं, मैं आपसे ये आखिरी पूछना चाहता हूं कि अब लोगों की थर्ड और फोर्थ जनरेशन यहाँ पे पैदा हो चुकी है, और थर्ड और फोर्थ जनरेशन से अगर ये नुक्स होता है तो उनका कोई तलक नहीं पाकिस्तान से, सोमालिया से, किसी अरब ममालिक से, क्योंकि उनका जो दो तीन जनरेशन जो है वो पैदा ही डेनमार्क के अंदर हुई है, तो उन लोगों के लिए हमारे जो सियासी पार्टियां या जो हमारे लोग कम्यूनों में बैठे हुए हैं या जो हमारे एक्टिव लोग हैं वो इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं कहते कि ये जो कानून है ये बहुत ही हमारे आईन के खिलाफ है, क्यों नहीं इस पर बात करते?
3: साहब ये बात मैंने भी की है, क्योंकि जब हमारा जैसे आपने भी पॉइंट की है, जब इलेक्शन हुआ था ये अक्टूबर नवंबर में उनके इलेक्शन आगे थे, तो बड़े लोगों ने हमसे सवाल किया था और हमने लोगों से यही कहा था कि हम लोग लेके जाएंगे इस सवाल को आगे, और हम लेके भी गए थे और इस पर हमारा क्या कहते हैं पॉइंट नोट किया भी गया था। उसके अंदर ये किया गया था कि फिर ये था कि वो सारी चीजों को देखेंगे, और उस चीजों को वो देख भी रहे हैं और वॉच आउट भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर कुछ तब्दीली लाई गई थी, ये हमें पता है। अब ये देखने की जरूरत है कि अब ये जब हुकूमत बैठेगी और ये अपना काम शुरू करेंगे तो इन बातों पर गौर किया कि नहीं। और आपकी बात सही है कि जितना बेहतर तावन होगा कि हमारी कम्युनिटीज बैठे एक क्या कहते हैं लाए अमन बनाए, एक खत लिखे जिसमें अपने पॉइंट जो है इन सब टॉप मिनिस्टर जिस तरह इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इनको खत लिखे ये कि अब हम फोर्थ जनरेशन पे पहुंच गए हैं तो ये क्या चीज है। और मैं आपको एक चीज कह दूं कि कमिंग डेज में ना एक फैसला आएगा जिस पे डिपेंड करेगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये कानून है। आपको मालूम होगा कि सिटी टू में रिसेंट एक वाकया हुआ था जिसमें एक 16 साल के बच्चे ने एक छुरा मार दिया था
4: जी।
3: उसको इन्वेस्टिंग स्टॉप मिली हुई है प्यू हाथ से, मगर अब उसका केस उस्तालेंस हाथ में जा रहे हैं तो उस्तालेंस हाथ के बाद पता चलेगा कि ये जो कानून ने बनाया इन्वेस्टिंग का इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और इसको क्या है। क्योंकि पहला डिसीजन तो जैसे साहब आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था जुमे वाले दिन के आप किसी के केस नहीं डिसमिस कर सकते, इवन कि आपने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भूल गए हैं तो वो बंदे का काम नहीं है, वो अथॉरिटी का काम है कि वो फाइंड आउट करे कि इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो ये क्या बंदा कहता है कि एक बहुत बड़ा फैसला था और इसके बाद क्या कहते हैं आइन और कानून को देखा जाएगा और फिर देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होता है। मगर ये बात आपकी कुराक है, हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग इस बात को लेके आगे जा रहे हैं कि हम फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में हैं, तो आप तब्दील कर लें। ये मतलब नहीं है कि आप जिस तरह इंग्लैंड जा रहा है दूसरे मुल्क से कि वहाँ सातवीं आठवीं जनरेशन आपने रेकोनाइज किया था, जरा थोड़ा क्या कहते हैं टाल ली। क्योंकि दूसरी बात ये होती है कि बंदा विंकल से देखे ना, तो बंदे को ये भी देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आगे हुए हैं वो इस जगह पे बैठ गए हुए हैं कि जहाँ पे बड़ी ज्यादा जरूरत है। सारे ये किस्म से मौत में इलेक्शन में शुरू हो गया था कि एक मुसलमान अंदर आए एक मुसलमान बाहर आए। जब हमने उसके बारे में पूरी क्या कहते हैं रिपोर्ट बना के दी थी तो आप माने कि उनके फेसेस रेड हो गए थे कि आप लोगों ने तो ये मुल्क ही क्या कहते हैं बंद हो जाएगा कि ऐसे हम करें। तो मैंने कहा यही तो हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग बोलना शुरू हो जाते मगर आप कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते कि यहाँ पे क्या होगा या इंटरनेशनल बिजनेस लेवल पे क्या होगा। मैंने कहा हर पर्सपेक्टिव को बंदे को लेके चलना पड़ता है क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है वो मिडिल एशिया में बहुत है, आला का बहुत है, वेस्टा का बहुत है, नोडिस की फैक्ट्रीज पाकिस्तान इंडिया में है, यहाँ पे है, तो बंदे को बहुत कुछ देखना पड़ता है चीजों में।
4: ये वो बात है, आपने बहुत अच्छी की है। अब थोड़ा सा आप मुझे जो बता रहे थे अपना मॉडर्न फलके पार्टी का, उसमें थोड़ा सा आप आवाम को बता दें कि वो क्या बात थी और क्या उसके ऊपर लोग आपसे पूछ रहे हैं।
3: शाह साहब वो ये हुआ था कि जब इलेक्शन का कंपेन शुरू हुआ था ना, तो इलेक्शन के कंपेन में ना उसने एक मॉडर्न रखा था कि मैं कामयाब हुआ ना तो मैं एक मुसलमान बाहर निकालूंगा तो एक मुसलमान अंदर लाऊंगा। और ये बात उसने बड़ी क्या कहते हैं हाईलाइट की थी और उसने ना ये बात क्या कहते हैं एक किस्म की ना तीसरे दिन ही उसने ये कर दी थी इलेक्शन पे। फिर हुआ था ये कि उसने ना जो जो क्या कहते हैं ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, फिर उसने अपनी जितनी उलनिंग पुलचिक है ना जो बहुत बड़ी थी इसकी पॉलिसी, इसने हमें पुवीरेशन करने के लिए ना जो हमारी छोटी ईद थी ना उसके एक दिन पहले इसने अपनी सारी पॉलिसी बाहर निकाल दी थी। और इसके अंदर इसने ये भी लिखा था कि बंदे को ये जो उलरिस्टिंग स्टॉप है ना इसको और टफ किया जाए। तो यही इसका क्या कहते हैं बिग लड़ाई झगड़ा पड़ा था लास्ट लोके के साथ, क्योंकि लास्ट लोके ने इसे डायरेक्टली पूछा था कि तुम ये जो बात कर रहे हो तुम किस बिनोद पे कर रहे हो। तो वही जो आप बात करते हैं, इसने कहा था कि मैं स्टॉप कराऊंगा ये एक मुसलमान बाहर हो जाए, मैं ये जितनी कल्चर सेंटर है जिसको हम पाकिस्तानी मस्जिद कहते हैं मैं वो भी बंद कराऊंगा, मैं उनको भी नहीं इजाजत दूंगा, मैं क्या कहते हैं शॉ क्लब भी बंद करूंगा। इसने ना कहते हैं पूरी की पूरी जो अपनी लाइन है ना वो सख्त कर दी थी। और ये इसीलिए ये जो ब्लो ब्लॉक था ना ये इसीलिए इसकी हुकूमत नहीं थी बन सकती क्योंकि ये एक अपनी क्या कहते हैं पॉलिसी पे था। ये इसने एक ही झंडा लेके आया था कि मैंने अपनी क्या कहते हैं जो मुसलमान है ना उनको पूरा टारगेट करना है। और इसने अपने पूरे इलेक्शन के कंपेन के अंदर टारगेट किया था एक एक लावा के। ये दूसरा इसका जो स्टंट था वो सारे मुल्क को पता है, ये जो जाके पेट्रोल पंप में सस्ती बेंजीन और डीजल दे रहा था लोगों को वो स्टंट था, वरना इसने अपना पूरा कंपेन मुसलमानों के खिलाफ किया था। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं व्यूअर्स को, मैंने इसलिए बात की है जिस दिन से ये गवर्नमेंट बनी हुई है ना ये एक से एक एडवर्टाइजिंग फेंक रहा है। एग्जाम्पल ये फेंक रहा है कि हमारे जो कल्चर सेंटर है जिनको हम मस्जिद पाकिस्तानी समझते हैं वो है कल्चर सेंटर टीनी मस्जिद है डेनमार्क में, लोगों को पता होना जिसको कल्चर सेंटर हम कहते हैं। मैं इसलिए उसको कल्चर सेंटर कह रहा हूँ क्योंकि जो डेनमार्क का क्रैक रफ्ट में वो इस्तेमाल करूँ कि कोई मीडिया वाला ना इस पर बात बात पे करे। अब उनको ऊपर ये लगा हुआ है इसने डिबेट शुरू किया हुआ है कि जितने ये बन गए हुए हैं और बनाने देने चाहिए कि इनको भी बंद किया जाए। तो इसने ना पूरा मुसलमान को टारगेट किया हुआ है। और दूसरा ये काम कर रहा है कि कोई गैर मुल्की या कोई फॉरेन का कोई केसेस खत्म हुए हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं मौत पुलिस को जब जस्टिस मिनिस्टर था ना 2011 से लेके हिलेरी स्मिथ में उस वक्त एक केस आया वो केस को ये हाईलाइट कर रहा है और उस पर मौत पुलिस को टारगेट कर रहा है कि तुमने ये उस वक्त तुम्हारी गलती थी इसलिए ये सारे क्या कहते हैं उलझ नहीं हो रहे। और ये बात बड़ी जरूरी है कि हो सकता है कि ये भी चीज हो जिसकी वजह से मौत पुलिस को उन्हें अग्रेशन दिखा दी हो कि मैं इतना प्लू नहीं हूं जितना हो सकता है। مگر وہ بات یہ آپ کی چاہیے کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. یہ سپن ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کو بندے کو تھوڑا بہت کنٹرول کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے.
4: ادنان میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے اس کے سوال بھی آپ کے نکلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈنمارک کے اندر بہت سارے ایسے لا فورسز بنے جو آئین کے خلاف تھے, بعد میں وہ ڈمالش ہو گئے, ختم ہو گئے اور ان کو بیک لائن کر دیا گیا. ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے 55-56 سال ہو گئے اس ملک کے اندر, آج تک ہماری کوئی ایسی تنظیمات خصوصی طور پہ جو سب سے ایکٹیو لوگ تھے یہاں پہ وہ پاکستانی تھے ڈینش سیاست کے اندر, آج تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھ کر ہم ڈینشوں کے ساتھ بات کر سکے, ڈینش پولیٹیشنز کے ساتھ بات کر سکے. ہم منسٹرز کے پاس جاتے ہیں, منسٹروں کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, انہوں نے وہی بات کرنی ہوتی ہے جو ان کی پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہوتا ہے, لیکن جو باؤلینڈز ہے, جو ان کی کریس ہے, جس کریس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, اس کریس میں ہمارے انفلوئنس نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں نہ ہی ہماری کوئی رسائی ایز اے پولیٹیشن جو ہے فرسٹ کے لیے اس بیل میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اگزامپل میں میئر کو ملنا چاہتا ہوں البرٹ راؤنڈ کمیون کے اندر, تو میئر کا کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ڈائریکٹ جس کو میں اس کو کال کر سکوں یا اس سے ٹائم لے سکوں. مجھے صرف ایک انٹرنیٹ پہ میسج بھیجنا ہوگا یا ان کو جا کے ایک ریٹرن دینا ہوگا تو میں ان سے مل سکتا ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو دو اب سوال شروع ہو رہا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ ختم کی گئی قانونی طور پہ اس ڈنمارک کے اندر. پہلی تھی کہ یہ جو ٹلکٹنگ کیس تھا یہ ختم ہو گیا ڈنمارک میں, جو انہوں نے بڑی بہت زیادہ پابندیاں لگائی اور ہمارے بہت زیادہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے, سویڈن چلے گئے, ناروے چلے گئے اور جرمنی چلے گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹلکٹنگ سے جو ہے وہ ختم کر دیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ صرف مسلمانوں کو انہوں نے زیادہ پرابلم دی. نمبر دو پہ انہوں نے ٹیکسی کا لاز بنایا تھا پرانا لا ختم کرنے کے لیے, تو وہ نیا لا جو تھا وہ اوپر کو اسی سپریم کورٹ نے ہائی سٹار نے یہاں پہ اس کو بین کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے, آپ ہمارے ملک میں بین ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ابھی کہ کسی کو ان ریسنگ کی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس ملک میں نہیں آ سکتا ایک مخصوص پیریڈ تک. اب اس کے اوپر کوئی بین نہیں, ٹائم بین نہیں لگا تھا, لیکن یہ واپس اپنے وعدے سے پہلے ہی واپس آ گئی اوبر. اس طریقے سے پوری جو ہماری ٹیکسی برانچ ہے یا ٹرانسپورٹ برانچ ہے اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف سیاست دانوں نے ہلا کے رکھ دیا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ایک جو ہے پیرلل میں کہوں گا کہ سم فون انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ جتنے یہاں پہ ڈینش اوریجنل ڈینش ہے اور جو ہم لوگ ہیں انواندہ جو 70s میں یہاں پہ آئے تھے, ان میں اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے سیلف بہرنی کا یہ بہت بڑا فقدان ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی فوراً لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں اپنی فیملیز کو یہاں پہ نہیں بلا سکتے. یہ فورسز بہرنی کیوں ہو رہی ہے اور یہ ہائے سہا کے ناک کے نیچے ہو رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
3: میں شروع سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پورے فیملی والے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں نا, یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی اس میں کیا ہے, کیونکہ ان میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بہت ساروں کو واپس بھی جانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو انکم رکھی ہوتی ہے اور جو ان کے ڈیمانڈس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے اس کا کوئی یہ کیا کہتے سمجھ ابھی تک نہیں آئی, کیونکہ ہم نے اسی لیے نا آواز اٹھائی تھی ایک ٹائم پہ کہ یہاں پہ آپ پہلے ہمیں پتا ہے کہ فیوچر میں کمی ہے لوگوں کی اور وہ پورے کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم نے میرے اپنا اور کچھ لوگوں کی رائے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری پبلک یہاں پہ ہے جن کو ہم سیٹل کر سکتے تھے, تو اب ان کو کیا گیا ہے. اور یہ بات آپ نے میرے سے کیا, یہ بات डेफिनेटली अर्जी करनी भी है पार्टी से, पूछना भी है कुछ लोगों से किसका इसका मतलब क्या है। दूसरी बात रही आपका जो दूसरा सवाल था टैक्सी के बारे में, वो मुझे आज तक समझ नहीं आई क्योंकि मैं बड़ी दफा ये मुझे खुद समझ नहीं आती क्योंकि मेरा बेटा है, पूछता बड़े लोग पूछते हैं कि ये टैक्सी और उम्पा के ऊपर इकट्ठे रखे हैं। मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं कि पहले इनको किया गया था कि ये चल नहीं सकते क्योंकि ये ऑरेंज कफ में नहीं थे, पता नहीं इन्हें क्या ब्लंडर किए हुए थे। मैंने कहा अब ये इकट्ठे हो गए हैं, मैंने कहा इसकी मुझे कोई इलम नहीं है कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि इससे तो यही होगा कि रात तो टैक्सी का बिजनेस कम बहुत हो जाएगा और उनको मसला पड़ जाएगा, राउबा ले जाएगा। और यही तो आपके आप ये मिसाल दिए, यही तो सेम चीज हो रही है जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं खाने वाले उधर, जैसे आपको पता है कि जस्टिस ने अपने आप को लीव कर लिया क्योंकि वो कह रहे थे कि दूसरे आ गए हैं और एक्सपेंशन है। तो ये बहुत सारी क्या कहते हैं चीजें हो रही हैं जिनको जरा बंदे को और से देखना चाहिए। और आपका जो तीसरा सवाल है उस पर तो मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं देना चाहता क्योंकि मैं खुद उस चीज से गुजर चुका हूँ, तो मैंने देखा हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: चलें शाह साहब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अदनान देखें, हुकूमत ने भी वादे किए हैं, सात पार्टियां भी मिली हैं, सपोर्टिंग पार्टी भी मिली है, चार जमातों की हुकूमत है, तो दूसरे अल्टरनेटिव भी उनके साथ मिल गया है। तो वो उन्होंने कहा जी हमने अपने मुतालबात जो है वो बैकडोर मनवा लिए हैं, तो आने वाले दिनों में ये दांतों का इलाज, ट्रांसपोर्ट का मसले मसाइल या इस तरह के बयान आते रहते हैं, हुकूमत कितने मैंडेट से बनती है, क्या हुआ, किस किस किस का मैंडेट है, तो मैं चाहूँगा इसको ज़रा साथ लेकर चले।
3: राज साहब इस पे दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो हुकूमत बनी हुई है ना, इसको टेक्निकली कहते हैं मिंता चैसा कियांग, क्योंकि ये जो हुकूमत है ना मिंता चैसा कियांग, इसका एक फर्क होता है कि 82 सीटें हैं। ऑब्वियसली इंग्लिश लिस्टन और अल्टरनेटिव इंग्लिश लिस्टन की मेन पार्टी है क्योंकि उनके साथ ये 90 से ऊपर हो जाते हैं, अल्टरनेटिव को भी इनके साथ रखा हुआ है वो पूछताछ पुल के लिए। मगर इसमें एक बिगेस्ट चेंज ये है कि ये जो 82 मैंडेट है ना, और जो इंग्लिश लिस्टन का रोल है, इंग्लिश लिस्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2011 में जब एलिसन स्मिथ ने गवर्नमेंट बनाई थी ना, तो एक टैक्स रिफॉर्म आया था, और वो टैक्स रिफॉर्म ऐसे बना था कि ये जो 82 मैंडेट है ना उसने प्लो प्लॉक के साथ बना दिया था। तो इसलिए इस बार जो इंग्लिश लिस्टन वाले है ना, उनने एक किस्म का ये गवर्नमेंट से कहा हुआ है कि आपने बहुत दोबारा हरकत की जो आपने 2012 में की, तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि टेक्निकली जो होता है ये मिंता चैसा कियांग बनी है, क्लियर चैसा कियांग जो बनी थी वो पिछली थी, जब ये मीना कियांग बनी थी उनके पास पूरी सीटें थी अपनी कि वो किसी की बात सुनने की उनको जरूरत नहीं थी। मगर अब जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो लो ब्लॉक के साथ भी पॉलिसी बना सकती है और क्या कहते हैं अपने अलायंस के साथ भी बना सकती है, तो इसके लिए ये बात होती है। क्योंकि मैं आपको पहले एक बात एग्जांपल छोटी सारी दे देता हूं कि इंग्लिश लिस्ट पहले क्या

0: अपने अलायंस के साथ चले जाएं, टॉप लो ब्लॉक के साथ चले जाएं, उनको 90 सीटों की है। और इसी तरह जैसे उल्लानिंगा पुलचिक होगी, वो भी उन्हें कोई सख्ती की या कोई चीज करने की कोशिश की तो उन्हें लो ब्लॉक के पास जाना पड़ेगा, वो रेड ब्लॉक से फ्लेचर नहीं ला सकेंगे क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि है। मैं बस आपके व्यूज को आखिर में ये बता दूं कि उल्लानिंगा पुलचिक जो बन चुकी हुई है उसको लिम्पा करने का बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका फ्लेचर है। हाँ ये हो सकता है कि इसको खड़ा कर सकते हैं मगर इसको लिम्पा नहीं कर सकते, जो बन गया हुआ है वो बहुत मुश्किल है कि वो चेंज हो क्योंकि जो पार्लियामेंट का मेंटर है वो स्थान उलेन के पुल की हक में ज्यादा है अनफॉर्चुनेट।
1: अदनान, आप बहुत सारे काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, सारी पार्टियां क्या बात है आपको लेने के लिए तैयार हैं, SF आपको लेने के लिए तैयार है, रेडिकेट वेंस्टा आपको लेने के लिए तैयार है, दूसरी पार्टियां आपसे लेने के लिए तैयार है, सारी पार्टियों के साथ आप बात भी कर सकते हैं और आपकी बात को वो सुना भी जाता है, तो ये बाकी जो डिबेट शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट डिबेट शुरू हो जाती है, उसको रोका कैसे जाए?
0: डॉक्टर साहब मैं एक क्राइट बात कर लूं कि मैं खुद दूसरी पार्टियों के पास मैंने चेक करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी कि मैं जा सकता हूं कि नहीं, तो उनने कहा था कि तुम 100 बिस्मिल्लाह काम करने वाले बंदे तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, वो कचेरी होते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि दूसरी पार्टियों के अंदर है डिबेट। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपना सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे क्या कहते हैं ये दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि मैं आपको ये एक बात मैंने जैसे आपको कि आप खुद खोल के देख लें, मैं जब फेसबुक खोलता हूँ, जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ, जब ट्विटर खोलता हूँ, आगे यही है कि हम इस वक्त टारगेट है। तो इसके ऊपर कि हम एक दूसरे के ऊपर टारगेट करें, हम इस वक्त फ्रंट पेज ये करनी चाहिए कि जैसे शाह साहब ने कहा कि हम अब चौथी पांचवी छठी जनरेशन हो गए हैं कि हम अपने आप को क्या कहते हैं एक लेवल पे लाएं कि जहां हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें और बता सकें कि हम इस सोसाइटी का एक हिस्सा है, क्योंकि जब जितनी देर तक हम ये नहीं बताएंगे हम अपने मसाइल में रहेंगे कि एक दूसरे के पीछे रहेंगे तो कोई फायदा नहीं हमें होना, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा।
1: हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। शाह साहब आप आखिर में क्या कहेंगे, अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करें, फिर प्रोग्राम हमारे पास 5-6 मिनट टोटल हैं।
2: जी मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ अदनान से। सिर्फ मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जब किसी कानून के बारे में बात करें तो हम अगर डेनिश आइन को पढ़ लें, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुंड लॉ को जेन नशीन कर लें और बल्कि बुक को साथ ले जाएं और जिस सब्जेक्ट पे हमने बात करनी है उसकी उसके जो है वो येलो उसके येलो लाइंस लगा ले तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि ये जितने भी उलेनिंग्स लॉ गिवनिंग बने हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा स्वामी जो है वो खुद डेनिशों के जो असल डेनिश है उनकी जो है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आई है, वो चैलेंज हो सकती हैं और हमारे खिलाफ जो बनी हुई है जो अब हम लोग हैं हमारे खिलाफ भी ये नहीं कर सकते। अगर हम लोगों के पास बहुत पढ़े लिखे वकील हैं, हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि उनको आइन की माजत के साथ समझ नहीं, वो लॉ फोर्स में पढ़ के तो समझते हैं कि अब इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसको उन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पार्टियों के बगैर भी हो सकता है अगर हम इसको ओम्बसमैन को लिख दें और उनको बताएं कि ये जो कानून आप लोगों ने पास कराए हैं ये कितने खतरनाक है, अगर हम इसको यूरोपियन यूनियन में ले जाए तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। एनीवे ये बात करने की है, हम इस पर डिबेट करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल में अदनान आपने जो बातें की है ये बहुत अच्छी बातें हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये जितनी पार्टी है ये पिछले कानूनों को लेके चलेंगी और जो कानून उन्होंने बनाए हैं वो लेके चलेंगे। डेंटिस्ट का इन्होंने आज भी अखबार में दिया हुआ है और वो बता रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पेंशनिस्ट हैं या वो जिनके क्रोनिक सिंड्रोम है इनको जनवरी में अगले साल जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट या कुछ थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा तो इनको सहूलतें होंगी डेंटिस्ट की। तो बाकी पेंशनरों के लिए क्या करते हैं, क्या उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट आगे हमें थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है लेकिन क्या वो भी टोटली फ्री होगा, तो ये देखना पड़ेगा। जो ये उन्होंने कहा ना कि 10 साल तक तो ये

0: असल में कोई भी हुकूमत आ सकती है, वो इसको दोबारा चेंज कर सकती है, इसको वापस ला सकती है, इसको नून को खत्म कर सकती है। ये कोई आपने जैसे बताया कि ये जो है मिद्रा टेल गवर्नमेंट है, इसलिए मैं इसको पीडीएम की गवर्नमेंट कहता हूँ कि ये अपने आपको बचाने के लिए अब इन्होंने जो मॉडर्न बुल्सको ने जो पैगाम दिया है और जिस फेस पे उनकी रीडिंग आ रही है, वो सिर्फ इसलिए बताया गया है ब्लू ब्लॉक हो के हम आपसे कम नहीं, हम भी जो है उनके लिए इसी तरह का रवैया रखते हैं, लिहाजा हमारे वोटरों को दूसरे ब्लू ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि ब्लू ब्लॉक के जो वोटर्स हैं वो हमारी तरफ आ सकते हैं क्योंकि हम सब के ख्याल एक हैं। तो अदनान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने लोगों को अच्छी और हमें भी खुशी हुई कि आप दिन ब दिन जो है वो मेहनत कर रहे हैं और लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और राजा फूर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बाकी अल्लाह सबका नगेबान है और हमारी तरफ से खुदा हाफिज।
1: सामेन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर जी रेडियो आपकी आवाज़। सामान ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो इस वक्त सबका पार्लियामेंट के उम्मीदवार और अपनी पार्टी के अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अपनी पार्टी में इनका असर रसूख ठीक ठाक है और ये सपोर्टिंग पार्टी भी है, हुकूमत भी बन गई है, चार जमातों की हुकूमत बनी है। चूंकि ये पुराने सियासतदान हैं, हम इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे, मालूमात भी लेंगे, पार्टी के बारे में भी पूछेंगे, इनकी पार्टी का अपना क्यों इत्तेहादी पार्टी तो है या कोई कमेटियां मिलेंगी या कोई अपोजिट साइड है, ये सारा मिला जुला जो इन्फॉर्मेशन होती है इन्होंने ही देनी होती है। मेरी मुराद है कासिम नज़ीर। कासिम, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत जो है वो बन चुकी है, चार जमातों की हुकूमत बनी है, वजारतें भी तकसीम हो गई हैं, तो ना इन स्टेशन को कुछ मिला और ना आपकी जमात को कुछ मिला, आप क्या कहेंगे?
3: ऐसे है कि ये जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए हैं, जो मंडेट जिस तरीके से पार्टियों को मिले हैं, इस तरह पहले कभी डेनमार्क में नहीं हुआ कि किसी ब्लॉक को पूरे 90 ना मिले हों। मतलब कि जिस तरह देखा जा रहा था वो यही था कि किसी तरीके से सामा पाइट करनी पड़नी है, क्योंकि अगर आप एक तरफ देखेंगे तो उनके 82 बनते थे तकरीबन मंडेट, दूसरी तरफ देखे तो उनके इससे भी कम बनते थे ब्लू ब्लॉक में। फिर जाहिर है फिर जो जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे बात की है और इसके दरमियान में जो खड़ा था वो मुर्गार आने है। अगर आप ये जो चार पार्टियां ले लें जिनकी गकेंग बनी है, इनके मंडेट अगर आप मिलाएं तो बनते हैं 82 मंडेट, और अगर आपने हुकूमत बनानी है तो आपको चाहिए 90। तो इधर ये हुआ कि इन्होंने इनहस लिस्ट से और जिस जमात से पार्टी से मेरे ताल्लुकात अलसैना चू, उनसे इन्होंने राबता किया है कि हम आपसे हेल्प चाहते हैं कि आप या तो फिर हमारे साथ गवर्नमेंट में आए या आप हमारे स्टूडियो बने। तो हमारी जमात ने और इनहस लिस्ट ने कहा है कि हम आपकी स्टूडियो फचिया बनना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट में नहीं आना चाहते। और उसकी वजह ये है कि अगर हम गवर्नमेंट में बैठते हैं और अगर गवर्नमेंट कोई सख्तियां लाए जैसे कि गैर मुल्कियों के खिलाफ है या कोई और चीज करना चाहती हैं, तो हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट में इनके साथ बैठे हुए हैं, वो क्रिटिसाइज करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम स्टूडियो फचिया बनना चाहते हैं तो उससे ये फायदा है कि हम जो चीजें चाहते हैं वो मनवा भी सकते हैं और साथ में इनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। इधर स्टूडियो फचिया बनने के लिए अलसाना चू ने अपने 5 मंडेट की सपोर्ट दी है और इनहस लिस्ट में अपनी 11 दी है, मतलब हमने 16 दिए हैं जिससे कि ये 98 मंडेट बन जाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ली है गवर्नमेंट की। अगर आप देखें कि जो खोंगली ओनासोया विंस्था का जो फोर्स पहले बना था, उसने कहा था कि मैं एक मिंता छल की रखेंगे, वो इससे भी मतलब के जो चार जमाते इधर जिन्होंने बनाई है पार्टी, वो इससे भी कम की बनाना चाहता था मंडेट से, और उसके जो स्टूडियो फचिया थे वो बाकी सारे ब्लू ब्लॉक के थे, तो लेकिन उसके लिए ना की गई थी। तो अब जो हुआ है वो ये है कि 98 मंडेट के साथ इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई है, और जिस तरीके से आपने अभी कहा कि हमें कुछ मिला नहीं, हमने मिनिस्टर्स तो नहीं ली, लेकिन जो पार्टी का जो जो वकींग्स कौन रहे हैं, जो उसका जो प्रोग्राम बनाया गया है कि हम अगले 4 साल क्या करना चाहते हैं, उसमें हमने काफी अपनी चीजें मनवा ली हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम काफी सक्सेसफुल रहे हैं। जी राय साहब,
2: तो जो चीज़ें आपने मनवाई हैं, चूँकि आप हमेशा गैर मुल्कियों की बात करते हैं, आप हकूक की बात करते हैं और खुलकर अपना मौक़िफ़ अपनी पार्टी में देते हैं और आपकी पार्टी सुनती भी है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं, जो पीछे जो कमरे में जो चीज़ें तय हुई हैं, जो जो पार्टियों के साथ उनके जो है मुआहदे हुए हैं, और उसमें आप बताएं ये बस फ्री हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट फ्री हो जाएगी, दांतों का इलाज फ्री हो जाएगा और भी पेंशनिस्ट को सहूलियात मिलेगी, ये खाली खबरों की हद तक बातें हैं या प्रैक्टिकली हैं?
3: देखें, ये जो आपने जो चीज़ें नेम की हैं, आपको भी याद होगा और मुझे पक्का पता है कि आपके पास रिकॉर्डिंग ऑन बोर्ड भी है, कि जैसे कि ये आपने बात की है दांतों के बारे में कि ये फ्री हम देना चाहते हैं जो हमारे शहरी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो छेड़ने के पास जा सके। ये तो एक ऐसा मतलब कि मैके से है जो मैंने हमेशा अपने साथ रखा है, रीजन का इलेक्शन हो, प्यूहल का हो या फॉल्केचिंग का, मैंने हमेशा कहा है कि इस तरह होना चाहिए। अब ये जो बसें जो फ्री हैं, ये भी एक नुक्ता है जो मैंने फॉल्केचिंग में उठाया था, क्योंकि मेरा रابطہ स्कॉटलैंड ग्लासगो से बहुत ज्यादा है। एक तो ये है कि मेरी बहन की शादी उधर हुई है, दूसरा ये है कि हमारे जो मेजोरिटी रिश्तेदार हैं वो सारे स्कॉटलैंड गए हुए हैं, और स्कॉटलैंड में ऐसे है कि ये उधर उन्होंने लॉ बनाई है कि जो 22 साल के बच्चे होते हैं उनको, बल्कि 25 साल तक उनको इजाजत है फ्री बस में बैठने की। तो ये भी एक चीज है जिसके लिए मैंने काफी मतलब कि फाइट की, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि ये देखें बच्चे गोरे हो काले जो ब्राउन जो भी हो हैं, तो हमारे ना इन्होंने इनके लिए यूज होगा, ताकि अगर उनको फ्री बस से कोपेनहेगन में मिलेंगी तो इनको फिर गाड़ियां लेने की भी जरूरत नहीं है, मतलब वो भी एक कॉइन ऑमस्टरिंग जिसे कहते हैं ना, उससे फायदा होता है। इसी तरह आपको पता है कि मैंने एक नुक्ता जो आपके रेडियो में भी कई बार कहा है, वो हमारी पार्टी पिछले 10 साल से कह रही है कि ये जो फोक तो पॉइंट है, मतलब के फ्रूट हो गए या सब्जियां हो गई, इन पे मॉम्स हटाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं, ये भी हमने मतलब के बात मनवा ली होना चाहिए। और बाकी जो खाने पीने की चीजें हैं उस पे हमने कहा है कि देखा जाए कि उसका जो मॉम्स है वो किस तरह हम आधा कर ले, जो कि आपके मेरे हम सबके फायदे में आ सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हैं, जिस पे फोकस होना चाहिए। इसी तरीके से हमने कहा है कि हमने एक हैंडिंग्स प्लान जो है, जो गसीस्मे के ऊपर सही तरीके से नहीं बनाया गया, गसीस्मे जो होता है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं होता, जो दूसरे रिलीजियस उनके ऊपर भी हो सकता है, कालों पे भी हो सकता है जो रिलीजियस नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने वर्क करना है, हमने एक हैंडलिंग्स प्लान बनाना है, एक मंशूर बनाना है कि किस तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जो फाटना वॉल होता है जो खवातीनों के ऊपर, जो मतलब के उनके हस्बैंड या ख्यास्ता या बाहर से कोई जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, उन पर हमला करते हैं या रेप वगैरह होता है, इस पे भी ज्यादा हमने फोकस डालना है कि सही तरीके से इसको कवर किया जाए पुलिस की तरफ से भी, और इनकी जो सपोर्ट बाद में की जानी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत फोकस डाला है, कहा कि होना चाहिए। फिर आपने एक बहुत मतलब के अजीम बात की है, वो ये है कि आपने कहा कासिम आप गैर मुल्कियों के बारे में बहुत बात करते हैं, उस टॉपिक पे क्या हुआ है? उस पे ये हुआ है कि जैसे कि आपने भी नोट किया होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक नई हुकूमत बन गई है, तो मेरे फ्रेंड को कहा गया था कि आपने ये जो वैकेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो मंजूर है कि अगले 4 साल क्या करना है, इस पे आपने गैर मुल्कियों के ऊपर तो सख्ती के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं है, और उसकी ये वजह है कि हम इस सपोर्ट में नहीं है कि और सख्तियां होनी चाहिए, हम तो ये चाहते थे बल्कि कुछ नरमी होनी चाहिए थी इसमें, लेकिन इस हद तक हमारे पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं था। मतलब आपने ये भी देखना है ना कि मुरगार बैठे हुए हैं, एस एफ बैठे हुए हैं, गाड़ी खेल बैठे हुए, गाड़ी खेल भी इसका कि जो चेयरमैन है मासी दिल गवर्नर, बल्कि खुद ही कहा था कि हमने और नरमी नहीं डालनी, बल्कि हमने जो है उसके ऊपर फोकस डालना है। हमारे लिए जो सबसे जरूरी था वो ये था कि मेरे फ्रेंड ने कहा था कि जो ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशन है, इसमें से हमने बाहर निकलना है ताकि हम और भी सख्तियां कर सके। इधर हमने बहुत जोर लगाया है, और मुझे पता है इन ने भी लगाया हो, शहर गारी खेल ने भी लगाया हो, हमने जोर लगाया कि हम
4: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

तेरे प्यार च उम्र तबाह की थी बेदर्दा अज तू भुल नहीं इथो वध के कैसे रोया है झूठे दावे करन ते तुल नहीं मैनु एक पल विच जिन्हें दर्द मिले तेरे कोल इन्ने दुखड़े कुल नहीं तेरा सारी उम्र दा रो रहना मेरे एक अथरू दा मुल नहीं।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आवाज़ आपकी

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

एक बार मेरे पास एक प्यारा सा बुलबुल का बच्चा था जो खिचड़ी खाता था और रोज सुबह मुझको अच्छे अच्छे गाने सुनाता था। मगर एक दिन वो बुलबुल का बच्चा मुझसे रूठ कर चला गया और अभी तक वापस नहीं आया।

बहुत ही शरारती चूजे थे। एक दिन दोनों घर से निकलकर एक बाग में गए और वहाँ बेचारे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। और पता है फिर क्या

सच बोलने वाला बहुत बहादुर होता है, बिल्कुल शेर की तरह, और झूठ बोलने वाला बहुत बुजदिल होता है, चूहे की तरह। इसलिए

मेरे पास एक मुर्गी है जिसने अपने चूहों के साथ फौज बनाई हुई है। वो हमेशा घर से कुट कुट करती हुई निकलती है और अपनी फौज को साथ लेकर चलती है।

7825, code 6, 105 North Avenue.